0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Suru FM. Studio time.
2: It's 6 p.m.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुर्पुर नगर पालिक पांच सोलू खुम्बू
4: स्टेशन र उज्यालो ऑनलाइन में एक साथ प्रसारण भइरहेको छ
2: आज 2083 साल भदौ 9 गते मंगलवार सन् 2026 अगस्त 25 तारीख साउन शुक्ल पक्ष को द्वादशी उपरांत त्रयोदशी तिथि
1: काया करीरन का साथ मा
2: किसान पाइप प्रोडक्ट्स प्राली
1: राष्ट्र कुसान किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस
4: रजा वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको 70 को

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु कुंबू

0: उपहार पर्व में यूरो पेंस प्रस्तुत करद रंगीन चक्कर बरसिन उपहार रु 50,000 को यूरो पेंस को खरीद में पाने बाकी जो कूपन अभी पाठ तीन बजे एसी एक चार डबल डोर फ्रीज चूलो आइस कुकर वॉल क्लॉक अभी बंपर प्राइज में पाठ एक जोड़ी को लगी बाली टूल यूरो पेंस घर मात्र सपना
1: विगत 26 वर्षदेखि कृषि तथा भेटेरिनरी शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएको हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास
2: सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज आफ्नै कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी प्रयोगशाला तथा पार्क भएको दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस हिकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एनपीएस भेटेरिनरी डाक्टरमा भर्ना खुल्यो सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्स एन्ड

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगर पालिका 5 सोलुकुम

0: साजन छोड़ो पन भित्र ज्यादा आउंदा साथी भाई खोजनो
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: না অস্তি বারখানে কি নেমে লিয়াইগো ফের বিজুলি কো বাল্ব জ্বলেছ এই কাঞ্চি দাদা পছল গাইরে বিজুলি কো বাল্ব লিয়ে আইগো
1: হ্যাঁ দিদি ছিনকো ছিন কিনে রে কসরি স্বপ্ন রামরো অরিজিনাল বিজুলি কা সামান হরু কিন্নু পরি নি তা যাহা পায়ে তেই বাটা ল্যাউডা এসেই ডুবলি তা হুনছ তা অরিজিনাল বিজুলি কা সামান কিন্ন তা ও সল্লির কো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স মা জানু পর্ছ
0: কি তপাই ঘর তথা অফিস কো লাগি বিজুলি কো রামরো কোয়ালিটি কো সামান হরু খোজতে হুনছ এদি কোয়ালিটি কো ইলেকট্রনিক সামান হরু লিন চাহানু হুনছ ভনে সোলো দুতকুন্দ নগরপালিকা পাঁচ সল্লিরি মা রহেকো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স এন্ড সার্ভিস সেন্টার মা সম্পর্ক রাখনুহোস
1: यहाँ विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजली का संपूर्ण सामान सर्विस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिंग को तार अर्थिंग रड अर्थिंग केमिकल उपलब्ध छ साथ ही एलसीडी एलईडी टीवी साउंड सिस्टम कंप्यूटर लैपटप हाउस वायरिंग का सामान चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन चट्यांग पड़े जले का संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर
2: डीप फ्रिज फ्रिज एसी पाउन का साथ ही मरमत
0: प्रोपाइटर अजय पंचियार संपर्क नंबर 9890059094 9863668418
1: वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एंड सर्विस सेंटर सोलो दुतकुंड नगर पालिक पास सलेरी सोलकुम्बू
2: राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक देखि 30 मीटर भित्र
3: बाट बचाउ र बचाउ यौनसन्नी हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका यौनसन्नी हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन् हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाइ परिचित नातेदार जोसुकीबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौ बाल बालिकाको चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौ बाल बालिकासँग नियमित सम्वाद पनि गरौं
4: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय खोजी प्रदेशद्वारा जनहितमा

0: Rádio Solu FM. Solu FM, 101.2 MHz. उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे Solu FM स्टूडियो टाइम
2: 3 PM न्यूज को 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलु कुंबू

ऋण कार्य आर्थिक वर्ष को अंत्यसम रकम होल्ड करने और अंतिम समय में मात्र बाकी नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह भोलि को प्रतिनिधि सभा बैठक में उपस्थित हुँदा कालो चश्मा लगाएर जानुभयो भएको छ। उज्यालो प्रकाश में आंखा हेर्न कठिनाई देखिएपछि चिकित्सक ने उहाँलाई आंखा को सुरक्षा का लागि कालो चश्मा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमंत्री शाह ने गएको साउन 22 गते छाउनी में रहकर वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल में आंखा परीक्षण कराउँदा खाली आंखा में उज्यालो प्रकाश हेर्दा समस्या आउने देखिएपछि चिकित्सक ने आवश्यकता अनुसार कालो चश्मा प्रयोग गर्ने सिफारिश गरेका थिए। यस्तै परीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री ने आंखा सुक्खा हुनु भएकाले बेला बेला आईड्रप को प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ। प्रधानमंत्री शाह को स्वास्थ्य रिपोर्ट सहित को पत्र प्राप्त भइसकेको संसद सचिवालय का प्रवक्ता ले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। यसअघि सभामुख ब्रह्म प्रसाद अर्यालले संसद बैठक में कालो चश्मा लगाउन चाहने सांसद तथा पदाधिकारीले त्यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। भनेको प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रधानमंत्री शाहसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर को कार्यक्रम रहेको छ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Township. City of Fame. It's give you time.
2: It's 4 PM.
0: को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुन्द नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: सोनु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Studio Time in Studio Time.
2: It's 5 PM.
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुत्कु नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: एट स्कूल नेपाल को सेकेण्ड होम प्रोग्राम को नीति एकजना महिला कर्मचारी आवश्यक भैया दरखास्त आवाणित कर शिक्षित तथा योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का GOBSNEPL.com में प्रकाशित सूचना योजना अनुरोध कर
1: दरखास्त दिने अंतिम मिति यही भदौ 15 गति अर्थात अगस्त 31 तारीख सोलो खुम्बु कानून कैंपस को एनएलडीमा भर्ना संबंधी
0: सोलो खुम्बु कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083 संगाठी को लगी 3 वर्ष एलएलडी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले हुआ कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना होने जानकारी कराई
1: भर्ना कार्यक्रम मिति
0: भर्ना का आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गति देखि भदौ 30 गति समय प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नतीजा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते समय कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने मैथ कार्तिक 30 गते समय सब जानकारी का 98150105 98148445 र 98424875 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. City FM. The studio time.
2: It's 6 p.m.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका पांच सोलुखुम्बू

0: DWR नेपाल न्यूज़ जो मार्गदर्शन रेडियो ला प्रसिद्धले जय मसी तयाम तीन निजी क्यों मोगोई दाखपी शिम की उन्तां दुप्पी परला संग निजी की त्यां दोक लियामो के निदिन लियामो के निद्वाबीन
1: नशे लुंसा देखे होला तसी दिले तमा जैमेशी होता आलिंग आज लुंसा देखी पड़ला कुंजे की सुन लुपुला बीमार गतसन ये जोला वानिप सों नशे आलिंग कुंजे की सुन दी सुई कुंजे की चाव मपरी क्रिश्चियन देव नरी निमित घन लागा जिसनान तमा साता नुमो पलमा पर जीवी क्रिश्चियन देव तेरी की सुई कुंजे की निंदा मपर जीवी तमा दिला सुई कुंजे की मपर सी जी सुई कुंजे की मपर की मती की चेंगा अतर दंगा दिन वाय जीजी दुख्षिने चीनी दिन वाय की ये निया जाजना जुन्ना गो सुई कुंजो छोराजी मिंचेगा जुशी छोरा जलगम दुपुक्षी छोरा की नासन जाजना दोगे जीजमोलिंगा दुपुक्षी निंगा आरिंग निया निने जंगी समनांग देजी निने मतकबा लागते वाला शाह चानांग देजी सुख्यानी निलेजी निलाम खोया मतकबते वाला शाह वादिन में निला परचला फिर माची साम पमलो मेरा कपन बुटोल नंगे जी चिरसी जलखम मोलाम स्वाम की मेरी राम छोड़ा चिराई आमें दुक्याने दासा बनी लाम भाई बेल लोगों पर लगी चेही कुंजे जी मोपर्दी की वे तमा मोपर्दी कहाँ इंसुल को लाइन चिले ऐसी की दाग बुलाम मोपर की लाम ने मिली इंसी सिंह तमा चेही कुंजे की मोपर्ला चाहना हो विभंग बाते चली लाम कुतु कुतु रक्षे तमा तेंदा कहाँ इंसी ने सुलुप लागा की वे नई जोगन के दबी चेही कुंजे के मोपर्ला चेही चोइने जोगब की थोड़ा दाग दे व्याजन के पब मुलाम सुख्याने मोपर दमातम ने जोग से ने हाँ कोई की थोड़ा लेम जाने निमचों बोझे वे धक्के मोपर लाम जिम्मा पर मंग सिनां मंग हक बची वे उधरा लड़ाई की शंक वे जिम्मा पर वो दबंगे जीवी तमाम सही कुंजे की मोपर की कोर लाम धक्के ना समझे धासे की दौरे जनी तम ने जीवे धक्के की लाभ से लोग थर्मी की ताम कहाँ इंसी सिंह ऐसी की दखबलां कोई की लामती है कि गंगाशुरू की तम नलाम दिमाग पर क्यों कोला सुन ना सुन पे ये तेल की सीधा सुन ये चोई कौन जो युवा ने की खोले लामती वाला मोपर की लाम ने मिन्न दो के निवास में मोपर की लाम ने मिन्न नंगे जी गीतां मुगा चूजी की चीज लाने जीवे गीतों को मोपर की जोकता इन धकुले उदिंगे खर्च है मोती की चेप टुकलाम लेमा जने सीएम लेमा जुरुबलाम ग्रोइन होए यह दावी की मलो सही कौन जगी मोपर तमा गाड़ी गुड़ की नार्थी वाला थोड़ी हुआ है मोपर की कोला थल में की खर्च है ताम खर्च है सुलते जीजी जोले में लेनी आने दावु कहाँ की वासिन सुलताम बमिलाम जीताम दो कुदुग में इंजू खड़ा की रेडियो तमा चुके सीताम दिवां न्याजी चाव ताम दिवां न्यामा जनी निनी हो जू जी उंठुक की चुनाव तोड़ना रोनी जो को सोपला खड़ा की उन तमा कम बिल्ला निनी तमाम तम बते बते नहीं हो जू न्याज चुनाव गोल जी ताम खड़ा की निनी ना हो जू दिनाना खड़ा की सुरक्षित ताम दिवां हो जू तमा खड़ा की दिला निनी ना होए तमा त्याग की जीताम भाग रो चुनी होए तमा दिमा परसं चुकरे इन सोपला कौन जाके दागवे मुला ताम चारना गुरी कोई की खड़ा सुन जंगे भाई बहन से दागवे मुला गुनी बिन दंग गुरी तमा दाग भी की दिलाम सुखेने सुखे याने से मर लिंगे वे तमा मिसी न्यानी लामिं दागवे तमी तम दते जीवे तमा भार शोर नीम दीजी चादर बगल जीवे मो पर दिल लोग जब के दासाई इन जी ऐसी की लोग माम घब की दासाई था इन तमा दी गोरां बगल जानी ताम नींदु सुनां गुदुरां तामीन तमा दी की तैनाती सिगोसिं शार की भयं सुकुप देंगे तैनाती सिगोसिं योगी नासम लाम नम्जे है जी दीर मलाम चिगरा जब छलोग लाम तमा ये मताम निसो छुरुगा कुदुजोकुब लाम तमा छलेगी नासम लाम नंबर थम जे की ताम निसो गुदुर गावला तमाम चेंगे जब की थोकलाम जाओ लागाइन क्रिश्चियन लोग उपतां हिचेई कुंजे की मलाम जाओ तामीन तमा जिला मोपरीन हिचिगिले जाओ मोआ तमा कुंजे की जुआ कुंजे ला चीनी तमाम हिंदी की ना समझी मुलाम धर्मी की मिटी मुलाम तम ये चाव दोगे बोझी हुए तमा दुक्यानी ऐसी की दाग बुलाम सही कौन जगी मोबाइल भीम नंगो पड़लाम कौन जगी मुला चुक्या ने मोबाइल किलो सिरुम कोडलाम दाग बुला बंगी ताम जोआ लाभ ने भीम जान नासों भीम छतें तेनी तेरे दोगे इन दिदागी कौन जोआ सुखेनी मोबाइल किलो सिरुम तमा छतें तेरे बुलाम Yani mindir tamim. Sama bunun kişen diye, dimo parla kore mo par zeni, sama dakbi ki kuan dakki mulan, tam ye ki ula çüntüre kya o insisin, dike hudra mi? Dakbi koy ki mulan, man ye mi kya nisan tira tam titik gibi. Suke ni nga tanda kore mulan, di tam ki yi vay. Dakbi ki çoy kuan dakki mo parla, kuan dak papi mula tam ki vay. Dakbi mula kuan dak sun ju vay. Si kuan dak tamam, mula sun ju vay silo, tam ne liyama jene na hintonga. Puxi ni çila dakbo, yesuda senge tuji mula sang, Sinada mi midire, yanına var, kışan da umurla zundan var. Kuyki da kulama bakiru, lad mi dinlen son. Tükkanı koy da kuyumula, dakbiki komula, nani nambu parla, kuyki mu bakiya nambu de, dedi hudana kendi, kanka memu diri. Peri tükki esi ki mula, tam ni kasun. Çilesin koy koyaki, nakara doka keyin teya zundan var. Kayan çilesin, dakbi mula dakbi zulalan doka, esi dakbi mula zundan var. Tükkanı dakbi koyla, buksini mu bakiru. Tama kondaki nirasumtiwa, heki senji dini tamin, papa pujun tama tulchenge, thana ki tamin ya chungla, tumaji sini, dini tamde kaya insisin, bhaiba nana chini jang otu, kondaki senji hutuna jani insisin, chirasini kharaji dila, nama jani ha kosun sikin, kharaji dila kuala mao jiwi, tama di tamde, anga tikbeji tukasan jani, kharama mara tama, papa la lama jani, ha kogi tabki, yuji mao miju dokain, Dakbuti zulalan dokey, tamam dakbu dakbiji jisal insin, bukol dikba jiru nimala, dakbu umao ayki, dakbiji konca sunki, nakara yama jina kutuk giri, tamam lo ditam sirubla, bukol man lakba ayki, tamam bayrayki dikikorla, konca papa, bugün tamam tulçenge, tamam lo minasundar çıkan, zunyunda uvasini, yama jina lam ni binnan giri, tubay insin kiraki, sulama par kiaoyin, meyamuna uvay, tamam konca papa lamma par kiro, yesu ki dakbu Not the minimum doing. Tama Kwaji Sunan Sung, Niaja Vinishian, Susan Pavita Mutuin, Tama Tugara Inching, Swabalasan and Mujuji, Dabuji Dabi Mangsho, Mobile Dabu Kwanja Pabalanji, Chile Vin Dabuji, Kwaji Bujubunti Alam, Dabu Korado Yinishan Alawan, Dabuji Kwaji Tasaran, Tungi Niwan, Tama Dabu Kwaji Tasaran Jani, Tasa Hok Tumiwan. Kuatiran botol jadi junan weng. Taman dakbi ki hortan ji laka, zonan mutu kuala junan weng. Kuai ki dakbula zonan sung, dakbula dakbi dikpane sur, turum nabdi kuai ki la binan sung. Tukyane dakbi mupal, kuanja pabalaran jani, sungubla mutuk kibe. Kanta dakbi yesu la, cengge tulam mupal kitub kibe. Inge hudra yeni mupal kitub kibe. Nyaya tub kibe. Taman cila mutu be. Cengge tulam mupal kisa. Nen lema sija terup ki tokla, cengge tuji muratam kisa. Tama nen lema sija terup ki tokla, nga ye tukup la, tuji om tiri tokla, nen lema terup ki tokla, tama heji mijila, nije chungup ki tokla, cengge tuji muratam kisa. Tama ye sulama par kisa, tama kweji tamji ki tokla, kweji takbula chanangu, tamji ki tokla koala, tuji bina, ditere tam lema chaniwai, tama na tsuri kwanja ki mopal, dhabi kwanja papala mopal kiri, tama dhabi ki mopal, Mau pergi lu pula kuduran pergi, mau pergi ani jiwe. Taman di mau pula bumi, tam tiwa jani jiwe. Taman tak pula apa jani dobla, tikalah tiwi korla, nasun tunggu lep jiwe. Dia lale boh cintiwa wen. Tiye si ke, mati kuki tertala, goni bin jiwe. Narangani sotan ni jiwe. Taman coba pula curung mau pergi, taman ti pula, sen merak bah tiwa dokai. Kami marasa, sila sering tiwa, sama mengla tamam. Namjiti badani, nitiwiki tumsisini, wabar kirubla gajiwini. Mutana na kirangla sirin, kireki kya ganyi ni singotao. Tama kireki kanya sung, tama nitiw kwanjong nesul, nitum sirupti, tiyan kya ganyin. Tama tiwiki kwanjong lang, kirin kirubla duyina me. Tama matika na atubla, sopala kirungma parkiwe, khamna nala suni goche ni, tama dakwiki tumutubo, kwanjong papala ma parkisa. Tama tumutu shirai kwanjong papiji, shirungla kya ga binnangito. Tama sisi. Kisah musangku dasala, dini mau berkisah, sama mati kena dina, sama kini coba lama berkini, mau bermiji mijoga jani, mau bermakisah, sila sih bumi siklam, mau berjasa kau jadi tuan nulis ini, dia silur tamim, sama kau jadi cawa jadi, dakbi jilu musnang gomalam, dakbi jik hak setiwam, kang wa sini kau jadi lama jadi cawa, mau berjalan jani min, kang le mijoga jago perlam, kuala yuni mau berkini, sama tiwi mau berkini. जीवजी काम लागा चीवे किसी ने मम्मा ने मम्मा पर चीवे पर लाम जीवजी मम्मा ने चुम्मा जनी थो चीवे तमा छोड़े की खोया तम लाम तमा समझले वो तो नीचे वाला मेरा जी ने मुझे तुम की थक लाम सिकानी बिन वाय जी ने जी खोया की सेव लाम खोया की रखते मैं डॉलर बिन ना सुन नीताम जो तो नाम दागु खोया की ताम ही तमा दागु कौन जो मुला तुका ताम की ताम की सिकान दरा मीन नीताम मेरे से जब मीन मीन तमा कौन जो दे सेम दांगो कौन जो जुना वाय कौन जो दे छासे छिया तमा छिंते हो जा जुना वाय सोई कौन जो के उनके ताम दरा मीन सोई कौन जो की खेले मुला तम जी युकुला सोली वाय तमा ती तम जी जी कोई से वो येशु कृष्ण सो खेलेगी मुला जांग मांग मीन युकुम नो ना वाय तू क्या ने दागु नरे सोई कौन जो मुला वो पर की वो येशु ने नाद नी तेरी वाय खोते दागु कौन जो जुना वाय तमा कोई जी जी बदो ब्लांग सेव जी ओम भीन नांग मीन कोई जी से मला नांग सुन कोई जी दागु दिखवा देवा ताची नांग सुन तमा दागु की थोकला रोक दमा भीन नांग सुन तमा जी तेरी ताम खेलेगी थोला छेन थेरो उसीन खेलेगी थोला कौन जो के तमजी सुनो मामा तमा जो जी बुआ सुनी हा को लागा किसा भूचानी कोई जी चुरूंगा नमसा नाम ओडो निजी केरुग नो नंगो वें युवा न चीजे चिंगी जी सुवे तमा जो जी को आला खुरे से मिला वे तमा कोई जी मिला मा जावे कोई जी दिवाला कौन जो जी बताओ वो भिन्नां वे युवा की छोड़ा दिनासम तमा गाजे वे तमा गई जोगन जी चुन ये सुखी से जी तमा कौन जो छोड़ा पापा सीधी सीधा दिल जी कोई जी चुनला तमने जानन वे चिरक जी कोई जी चुनला फक नंग वे तू क्या ने चुन खिसला युवा क्या ने कौन जो पपी जाते बा नसे आरी कौन जगह सुन के दूध रही नो नुसा ना बताऊं मुझ सकला दूरंग यानी दिले दिला कौन जगह ले आरा उन्हें सुन ला ना वो छेद ला

आज मन उड़ेर बाछा दिन मलाई जितना चाहे उनके नजीक जाऊं उन संग माया लाऊं उनके नजीक जाऊं उन संग माया लाऊं।

अच्छा दिन मनाए अच्छा है उनके नजीक जाऊं माया लाऊं उनके नजीक जाऊं माया लाऊं उनके नजीक

0: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. Studio time.
2: 10 p.m. रातको 10 बजे.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु